सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दय कर सब रण को आसंगर पूरन होए हमारी आसा दौर भजन गिर है प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं।

0: गुरु के वचन सुन के बादशाह कहन लगा मेरी जेड़ी इच्छा है
1: पुर कश्मीर चलो चित राखा।
0: मेरे मन की इच्छा है कि हुण मैं कश्मीर दे विच जावां ते उत्थे तुसी मेरे नाल चलो कुछ समा मैं उत्थे तुहानूं रखणा करा।
1: चला संग ही माझे देश।
0: उस तों बाद महाराज फिर आपां इकट्ठे ही ना माझे देश दे विच जावांगे।
1: दर्श आपको होए हमेशा।
0: हमेशा मैनूं तुहाडे जिहड़े नाले दर्शन भी हुंदे रहणगे।
1: आज मुहूर्त को दिखरावो।
0: बस मैनूं तुसी थोड़ा समा दिओ मैं समें बाबत अपने अहलकारां दे नाल विचार कर लवां।
1: नहीं बिलम तित तुरत सिधावो।
0: मैं कोई बहुती देरी नहीं लावांगा महाराज।

ज्ञान अहं बोध त्याग ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कार्य सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहजन वाहनान ब्रह्म ज्ञान का नह विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का बीता ब्रह्म ज्ञान का संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चंद ब्रह्म ज्ञान का निर्मलवंत ब्रह्म ज्ञान जिसकर प्रभाव ब्रह्म ज्ञान का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञान का तर बट भागी पाई ब्रह्म ज्ञान का बाल बल जाइय ब्रह्म ज्ञान का जहेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान या परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाह ब्रह्म ज्ञान का सकल मन वाही ब्रह्म ज्ञान का कौन जान पेद ब्रह्म ज्ञान को सदा दिश ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जाता क्यों ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मृत कान बखान ब्रह्म ज्ञान की कद ब्रह्म ज्ञान जान ब्रह्म ज्ञान का अंतर पार नान ब्रह्म ज्ञान का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीवा नरता ब्रह्म ज्ञान भुगत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञान अनाथ कना ब्रह्म ज्ञान का सब प्रहत ब्रह्म ज्ञान का सकलाकार ब्रह्म ज्ञान अवनरंकार ब्रह्म ज्ञान की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनान ब्रह्म ज्ञान सर्व का तन श्लोक उरता रजवंतर नाम शर्म पीखा भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस सगल निसतार अष्टपदी मिथ्या नाहि रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रिय रूप न पीख नेत्र साधकी टहरु संत संहित करन न सुनय काहु की निंदा सब ते जाने आवश्यक मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बहन मानते टरा इंद्री जेत पंच दोह तेरह नान गुण मध्य कुआ परस वैष्णो सो जेसु परसो प्रसन्न विष्ण की माया दोह पियन कर्म कर तो वै निह करम देह वैष्णो का निर्मल तरम काहु फल की इच्छा निह वाच केवल भगत कीर्तन संग्राज मन तन अंतर सिमरन को पैल सब प्रभुत कृपाल उदृढ़ाया ब्रह नाम ज पावे नानक वैष्णो परम गात पावे भगवती भगवंत भगत कारंग सकल त्याग दोष कसांग मानती बिन सह सकला परम कर पूजा सकल पार पम सा संग पाप मैल कुवै तुह भगत की मैल तू तुम वै भगवंत की टहल कराय नियत नियत मन तन अर पै बिशन प्रीत हर की चरण हृदय सब नानक है भगवती भगवंत का पाव स पंडित जो मन प्रभु राम नाम आत्म सुत राम नाम सार रास पीव उस पंडित का उपदीस जाग जीव हर की कथा हृदय सब सब पंडित फिर जो नावेद प्राण समृत पूजा मुख सुख मह जान सतपुर चह वर्ण कुति उपदीस नानक पंडित कौ सदाधीस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चाह वरणाम जपै को नाम जो जो जपै तुस्या तो सत्संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर अवतार पास प्रीत मुक्त पात्र अवतार सर्व रूप अवख नाम कल्याण रूप मंगल गुण गायम कहु जुगत कितै न पाइय तरम नान तुह मिलै जिस लिखिय तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म कर्म वाह तुस्का नाम सत राम दास आत्म राम तुह नद्रिया दास दसांतरण पाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदास दर्ग प्रवान अपने दाह को आप कृपा कर तह दाह को सब सूझी पर सकल संगात मोदास श्री जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुक्त सब कहावै तस हर कह शोक सदा आनंद तह नहीं वियोग तह स्वरण तह शिव स्माटी तस अमृत तह विखाटी तमान तब मान तस रंग तस राजान जो वरताय साई जुगत नानक हो पर कही है जीवन मुक्त पार

संत का दुखी अत बीज ते टूटा है, संत का दुखी ते काज ना पाए हुचै, संत के दुखी का उदयान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर तीत होता है, जो सास बिना मर्द गिरोत है, संत के दुखी की जड़ किस ना है, अपन बीज आप ही खा ही, संत के दुखी का आवर न रख रहा, नानक संत पावत लय उभार, संत का दुखी यूँ बेल लाई, जो जल भी हूं वह श्री तड़ फड़ाई,

पावे सोई थिया। संत का दुख बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुख का दरगह मेला सजाए, संत का दुख सदा सहकाई है। संत का दुख ना मरे न जीवाई है, संत के दुख की पूजा न आसा, संत का दुख उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्टा को जह पावे, तसा कोई हुए पया करत ना बेटा कोई नारंग जान सचा सोई। साहब काट दस के हो करने आर, सदा सदा दस का नमस्कार, प्रभु की उस तत्कर हो दिन रात, तिसह ति आवह।

सब संचरण चलों वार गोविंद मिटह पाव जप्य हर बिंद कार हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर्गन अनुकूल मत थविड़ भागी दिए जान जग माही।

कराय करंग नाना वेद किन विस्तार प्रभम राशि एक ओंकार नाना चलत करी किन माहि पूर रहे पूर्ण सब ठाई नाना वेद कार बनत बनाई अपन किन दैव पाई सब काट दस के सब दस के ठाउ जाप जाप जीव नानक हर नाम नाम के तारे सगले जन नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम।

कौन कौन बान कौन अब मान जह स्वरूप केवल जगदीश सह तह शाल शत लगत कह की सह जह जो स्वरूप जो संग समाव तह कि सह भूख कव त्रवताव करन करावन करन हर नान करते का नह सुमार जब अपने स्वभाव संग बनाय तब कवन वायु भाव मित्र सुत पाए जन सर्व कला आप प्रवीण तह वेद देव कह गुचीन तब अपन आप आपुर तारत सगन अब सगन कह विचार जह अपन ऊजा अपन अब नीरा तह कौन ठाकुर कौन कह चिर विस्मन विस्मरे विस्मन नान कवन कह जन आव जह शाल शेद भेद समाया ऊहा किसा व्यावत माया स्वाप आदि सहते हो गुण का नह प्रवेश जह एक एक एक भगवान दा तह कौन चिंत कहला के चिंता जह अपन आप पति यार तह कौन कथा कौन सुनने हर अभाव व्यंत उज तुज नानक आप स्वाप है पा हुचा जह प्रज उपर पंच अकार ते हो गुण में किन विस्तार

बिना आकाश करा आप भला कर दूत आत्म किया बिजान अपने जी किया साज तारी सब साज उत्पोत अपन संग्राह ताकि गात कहीं ना जाए दूसरो यद हो जी पाए तुसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान की हो जान जो जान ते सदा सुख हो आप मिलाई लय प्रय सुई हो तानवंत कुलवंत पातवंत जीवन मुक्त जिसदा भगवंत तन तन तन जन आज प्रसाद सब जगत त्राय जन अवन कह स्वाव जन का संचित आव नाव आप मुक्त मुक्त कर संसार नानक देह जन कौ सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ्या राधिया पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया पूरी की गुण गाय।

महमंडन हैं, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कल कारण हैं, सर्ववारण हैं, त्रित के धारण हैं, जाके कारण हैं, मन मान्य हैं, जग जान्य हैं, सर्वंकर हैं, सर्वंकार हैं, सर्वपास्य हैं, सर्वनाश्य हैं, करुणाकर हैं, विश्वंभर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडल

कृताकृत हैं धरणी धृत हैं अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृताकृत हैं अमृतामृत हैं अजपाकृत हैं अमृतामृत हैं निर्णायक हैं खलकायक हैं विश्वंबर हैं करणालय हैं नृपनायक हैं सर्पायक हैं पवभंजन हैं अर्गंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ताकर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्मवास हैं जासके जास हैं भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज।

0: अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जास संबर एक नाम जपत गंत नेक
0: वेद पुराण सिमर सुधा अखर कीने राम नाम के अखर
1: का एक जीव सावे ताकि महिमा गई न आवे
0: आंखी एका दर्श तुहारो नानक उन संग मोहि उधारो
1: सुमणि सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जना के मन विश्राम
0: प्रभु का सिमरन गर्भ ना बसै प्रभु का सिमरन दुख जम नसै प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभु का सिमरन अन दिन जागै प्रभु का सिमरन साध का संग सर्व निदान नानक हर रंग
1: सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध

0: तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता।
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जान अपना किया आप ही मन
0: आपे आप करत निवेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाव सियानप सगल ते रहत।

0: अष्टपदी।
1: जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकर को रख मन माए।
0: जे प्रसाद सुगंधत तन लावे है तिसको सिमरत परम गत पावे है।
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे तिहाई सदा मन अंदर।
0: जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहो तिस रसना।
1: जे प्रसाद रंग रस पोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग।
0: जे प्रसाद पार टंबर हडावे तिसे त्याकत और लुभावे।
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पैर ताका जस गवी जय।
0: जे प्रसाद तू सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै।
1: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जब दरगह मान पावे नानक पास तेती घर जावे।
1: जे प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लाओ तिस राम सने।
0: जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे है हर हर जस कहत।
1: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकर प्रभता के।
0: जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे।
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे।
0: जे प्रसाद आ भूखन पहरी जाय मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै।
1: जे प्रसाद असब हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी।
0: जे प्रसाद बाग मिल्क धना राख प्रोई प्रभ अपनी मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत्य से ते आई।
0: तिसे हे ते आए जो एक लख है इहा उहा नान तेरी रखा।
1: जे प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
0: जे प्रसाद तू चार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी।
1: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
0: जे प्रसाद तेरी नीची जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह।
0: जे प्रसाद सुनहि करन नाद जे प्रसाद पिखे बिस्माद।
1: जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना।
0: जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग और कत लग हो गुर प्रसाद नानक मन जाग हो।
1: जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार।
0: जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप।
1: जे प्रसाद तेरे कार्य